सह कोसा तस पाछे बतरे श्रेया तन कवन खलापै कवन चुकापै मन में सिमरन करिया सबन दान दस अष्ट स्थान ठाकुर करतर तरिया जन नानक बल पल सद बल जाइया तिर अंत न पारा फरिया रा गया समहला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अकमा अकमे अपार सब त्यावहे सब त्यावे तुरजी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या भूषण तो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्प निरंतर जी हरे को पुरख समान एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोच बटाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अब न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या कुणि आख बखाना जो सेवै तुर जी जन नानक तिन कुरपान हर त्यावै तुर जी से जन जुक मैं सुखवासी से मुक्त से मोत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटे जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपो त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन से पिया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जिन नानक तिन बरजासी जासी

तप तप हे जपे बियंता, तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत साथ जी, कार क्रिया खट कर्म करंता।

जो सिर साईं नानिवै सो सिर कप उतार, जो सिर साईं नानिवै सो सिर की जय कायें, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदै थाएं, कुन्ने हेठ जलाइए

सम्मान योग गुरु सवारी गुरु प्यारी अत सत्कार योग सत संगत जीओ जितने भी आप सतगुरां दे हजूर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो आप वडभागी हो जिथे आप सारे मन करके तन करके गुरु चरणा की हाजरी भर रहे हो। सारिया नूं बेनती है भाई रसना की हाजरी सारिया ने लवानी है, कोई रसना सतगुरां दे बचना तो वांझी ना रह जाए। सतगुर ने बड़ी कृपा कीती है इस गुरद्वारा साहिब की समूह प्रबंधक कमेटी के उपरालिया सदका आप संतां दे दर्शन दीदारे ये जो जिवें हुणे सैकटरी साहिब होरां अनाउंस कीता है कि नवीं बिल्डिंग की उसारी होनी है और उसका नीम पत्थर जो ऐतवार वाले दिन रखिया जाना है उस संबंध में आप सारे गुरु चरणा की हाजरी ये जो चार पांच दिन का समा आपां नूं प्राप्त होया है। सो बड़ी चढ़ती कला दे नाल सारियां ने हाजरियां भरनियां ने और नाल नाल कीर्तन आपां सारियां ने मिल के करना है, कोई रसना वांझी ना रहे। सारियां ने अपनी अपनी रसना की हाजरी लवानी है। रसना पवित्र ही तां हुंदी है जदों ये बाणी पढ़दी है, जदों बाणी नाल जुड़दी है, नहीं तां हर एक शरीर का अंग वख वख विषयां विच है और सतगुरु बख्शिश करते ने कि यह शरीर पवित्र हो जाता है जदों गुरु चरणा विच आउंदा है, गुरु की चरणा विच मत्था टेकदा है, यह पवित्र हो जाता है। और रसना कदों पवित्र होंदी है जदों गुरु का जस गाउंदी है, गुरु की बाणी पढ़ती है। सो आओ बड़े प्यार विच सारे जुड़िए, कोई भी रसना वाजी ना रहे। सारिया ने बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी पावन बाणी दा जाप करना है और जिथे सतगुर ने कृपा कीती है इस गुरु घर दी समूह जो आप संतां दे वास्ते ये नवे हाल बनाए जाने ने और नवी इमारत तैयार होनी है आप संगतां दे सहयोग सदका। सो अरदास करनी है कि सतगुरु इस कार्ज विच आप सहाई होवन, क्योंकि गुरु का कार्ज है, ये गुरु का कार्ज गुरु ने आप कर लेना है आप संगतां दे सहयोग दे नाल। आओ बड़े प्यार विच सारे मिल के गुरु की बाणी दा जाप करिए और बड़े प्यार विच आपने हुणे मेरे तो पहला भाई साहब होरां पासों गुरु की विचार गुरु की कथा आपने श्रवण कीती है। आओ हुण कीर्तन दे नाल जुड़ जाए।

0: मोती मेरे दुध शिकाया मां गुजरी ते लाला नू तन मोती जिन पुन कमाया छोटे लाला ताई दुध शिकाया क्योंकि गुरु के प्यारे माता गुजरी कह लगे बे मोती तेरे बापू ने भी कुर्बानी की हुई है ना क्योंकि तेरा बापू हरा सिंह आनंदपुर साहब की धरती से शहीद हो चुका है पर गुरु के प्यारे भाई बाबा मोती राम दे चाचा जी भाई अहमद सिंह जी पंजा प्यारिया चो वह भी चमकौर साहब की धरती से शहीद हो चुके नहीं क्योंकि उस समय दो तरह के परिवार सन एक सरकार दे मिलवर्तनी है तो एक ना मिलवर्तनी है स गुरु के प्यारे कल इसी इतिहास का अगला पन्ना समय मिलया तो आप जी ने विचार की जाएगी सारिया संगतों का तय दिलो धन्यवाद इन बेनती करो प्रवान तो रल मिल के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पैरदास जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे सूतर तारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हरगोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदया वै ताए सब थई हुए सहाय सब थई हुए सहाय दसवा पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सब थई हुए सहाय दसा पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी पंजा प्यार।

दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तनः दयाल पुरख भगवानः नानक लिप्त न माया। पाह बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो।

कोट अघा गए नाश हर एक त्याया, निर्मल पए शरीर जन तुरी नाया, मन तन पए संतोख पूरन प्रभ पाया, तरे कुटंब संग लोग कुल सबाया, मन तन पए संतोख पूर्ण प्रभ पाया, तरे कुटंब संग लोग कुल सबाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु साहब जी दे मुबारक चरणों के गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रही जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माण योग साध संगत बड़भागे हाँ, जो समय विचों समा कढ़ा गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे सी। आप जी जानते हो आने वाली 20 सितंबर दिन एतवार को जो गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरद्वारा साहब की नवी इमारत के नींह पत्थर समागम हो जा रहे ने, फलस्वरूप मुख रखद्या होया जो गुरमत समागम आरंभ होए ने, इन्ह समागमों के हाजरियां भरने वास्ते माण योग भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर साहब वाले उचेचे तौर पर पंजाब तो संगतां दे दर्शन दीदारियां वास्ते आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन दे नाल जोड़न वास्ते इत्थे पहुंचे ने अपने पास। तो अज भी उन्हां दी हाजरी 7:30-8:30 दी उन्हां दी हाजरी सी। इसे तरह आने वाली 23 तरीक तक 7:30-8:30 दा समा भाई साहब जी दे जथे दा जो आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा निहाल करनगे, और उस तो उपरंत ढाडी जत्था ढाडी वारां आप जी नूं सरवण करवाएगा। तो वध तों वध इन्हां दिनां दे विच आप जी ने हाजरियां भर के रौनकां नूं वधाउणा। तो गुरु चरणा के दवान की समाप्ति की अरदास हुई है, कड़ा प्रसाद के गफे वरत रहे ने, जिन्हें संगत ने प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत आई हुई सारी संगत वास्ते गुरु के लंगर तैयार ने, सब ने छक के जाने की कृपालता करनी। ये नाल ही सजे हुए समागमों की संपूर्णता है। सुखासन की सेवा थोड़ी देर रोके होएगी, सहज पाठ साहब चल रहे ने तो पाठ होने ने, तो इस वास्ते सहज पाठ साहब सुखासन की सेवा जी थोड़ा थोड़ी देर रोक के की जाएगी। तो जुड़ मिल बैठी सारी संगत का धन्यवाद। जल पानी लंगर पानी सब ने छक के जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जियो पिंड सब रात की मार आपे जे वाले गौड़ी चेती मल्ला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मारे लूटे नीत नीत किसे आगे करी पकार जना श्री राम नामा उजर मना आगे जम दल बिजम खना रहाओ उसार मडोली राखे द्वारा पीतर बैठी सातना अमृत केल करे नित कामण अवलटे से सुपंच जना ताए मडोली लुटिया दिहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग से पंच जना कामण लोड़े सोना रूपा मित लोड़े सुबित खदाता नानक पाप करे तिन कारण जासी जम पुर बधाता गौड़ी चेती मल्ला पहला मुंदरा तिकट पीतर मुंदरा काया कीजे खंगदाता पंच चेले वस कीजे रावल ए मन कीचे डढाता जोग जूते पावसा एक शब्द दूजा होर नासत कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मडाया जे गुर पाई है हम गुर की नी गंगाता त्रिपन तारनार स्वामी एक ना चेत सदाता कार पटंब गली मन लावस संसा मूल न सावता एक सचरणी जे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जब निरंजन रचे मना काहे बोले जोगी कवट करा रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी कंत विहानी ता प्रणत नानक नागी दाजे फिर पाशे पवितानी दा कौड़ी चेती मल्ला पहला औकद मंत्र मूल मन एक है जेकर देख चित की जे रे जन्म जन्म के पाप कर्म के करण काटन हार हाली जे रे मन क्यों साहब भाई रे तेरे तीन गुणा संसार कमावे अर्घ लगना जाई रहा सकर खंड माया तन मीठी हम तो पांडे उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लाइटू घुस मूसा पाई रे मन मोह करे ते ता दुख लागे गुरमा मिले वडाई रे जो तन किया सोई होवा कितन मिटिया जाई रे सोपर परे न होवे ऊने जोता जोरा ते लंगलाई रे तिनकी पंग होवे जे नानक तो मूड़ा के पाई रे गौड़ी चेती मल्ला पहला कत की माई बाप कत केरा किदो थाऊ हम आए अगन बेंब जल पीतर निप जय काहे काम पाए मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कह न जानी औगण मेरे राव केते रुख बिरख हम चीने केते पशु अपाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए हट पट बंजर हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चो भी करे आवे हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी करे आवे अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छुपावे ताड़ तीरथ हम नवखण देखे हट पटन बहजारा लैके तकड़ी तोलन लागा घट ही में बन जा रहा जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किश मेरे अभावो डुबद पत्थर तारे जीड़ा अग्न बराबर तपे पीतर वगे काती प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती गौड़ी ब्राह्मण मल्ला पहला रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए नाम न जान्या राम का मूड़े फिर पाछे पैताए रे राव अंता तंत्र नी तरह अंत न चाया जाए अंत को चाहन जोग है सो आए अंत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पाग ढोए कर्म उपर निबड़े चेलो चे सब कोय नानक करना जिन किया सोई सार करे उमन जापी कदम का किसे वडाई दे गौड़ी ब्राह्मण मल्ला पैरा हरणी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार राम की
तेरा नाम वखर वपार जी रहाओ, कोकल होवा अंब बसा, सह शब्द विचार सह सुभाए, मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार, मछली होवा जल बसा, जी जंत सब सार और वार पार मेरा सौ वसै, हो मिलोगी बाह पसार, नागर होवा तार वसा, शब्द से पहु जाए नान सदा सुहागड़ी, जिन जो तेज हो समाए, गौड़ी पूर्वी दीप की मल्ला पहला, के क्या ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ति आखिया करते का होए बिचारो, तित कर गावो सोहिला सिमरियो से जनहारो, तुम गावो में निर्भव का सोहिला, ओम वारी जय सोहिले सदा सो कोई रहाओ, नेत ने जीड़े सुमालियन देखेगा देवनहार, तेरे दाने की हिम्मत नाम पवै ते दाते कौन संभार, समझा लिखिया मिलकर पावो तेल, देव सजन असीसड़िया जो हो वै सैब स्यों मेल, कर करे हो पहुचा सदड़े नेत पान, सदन हर हसमरिया नान से दे अवन, रागौड़ी गुआरी मल्ला तीजा चौप दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर मिलिया हर मेला होई, आपे मेल मलावे सोई, मेरा प्रभु सब बेदे आपे जाने, हुक्मे मेले शब्द पछाणे, सतगुर कह पै परम पौ जाए, पैरा च सरंग समाहे रहाओ, गुर मिलिया हर मन वसे सुभाए, मेरा प्रस पारा की मन नहीं पाए, शब्द सलाए अंतर पार हवार, मेरा प्रभ बख्श बख्शन हार, गुर मिलिया सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सच सोए, साच वस्या साची सवकार, उतंग करनी शब्द विचार, गुणते साची सेवा होए, गुरम नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार, गुरते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हर नामे लगे प्यार, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जो सत्संग जी, सतगुरु दी पार बख्शे रहमत कृपा दा सदका अमृत वाले सजे दीवाना दियां हासियां परियां ने, नेत्र अनुसार जो सरबत दे भले लई सहज पाठ राम ने बाण के पाठ सरण कीते ने, गुरु कृपा करे सब नू सतगुर चढ़दी कला बख्शन, सिर ते मेर भरिया हाथ रखन, सोहन समा है आसा की वर्द कीर्तन दा, भाई से भाई परमिंदर सिंह जी दा जत्था सरवण ग्राउंड गया आसा की वर्द कीर्तन, उस तो पहला बेनती है कि जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा श्री विखे नवे गुरुद्वारे की बिल्डिंग की उसारी जिहड़ी है वह आरंभ हो रही है, उस उपलक्ष्य दे विच दीवान जिहड़े ने वो सज रहे ने, शाम नू 4 बजे तो लैके 8:30-9 बजे तक दीवान सजदे ने, जिस विच कथा कीर्तन भाई साहब भाई परमिंदर सिंह भाई हरजिंदर सिंह ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੁਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਢਾੜੀ ਜਥਾ ਵੀ ਢਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਇਆ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਵਾਹ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

पौड़ी अपने आप साथ जो अपने रचो नाओ दोही कुदरत सा जे करा सिंडिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानी सबसे दिले सा जिंद कवाओ करिया सिंडिठो चाओ करिया सन डिठो चाओ

पौड़ी नाउंतरा निरंकार ने नरक ना जाई है। जियो पिण सब तिसदा देखा जे आग गवाई है। जे लोड़े चंगा अपना गर पुनो नि सदाई है। जे जरवाणा पर हरे जरवेश करें दी आई है। को रह न पर ये पाई है, को रह न पर ये पाई है।

मन कमेर शरीर का इकरति कृतवा हो। जुग जुग फिर वटाइए ज्ञानी बुझेता है। सत जुग रस संतो का धर्म कृतवा

तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला। नानक करके गोले जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित अमृत के दाते दसा पातशाहियां दी जोत साहिब सचे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब गुरदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुर की अमृतमयी बाणी आसा की वार दे कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। उपरंत सत्कार योग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास करके अज दा जो पावन पवित्र मुखवाक उपदेश है वो आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो आओ सात संगत समा है पावन मुखवाक दी विचार दा। विचारां नूं आरंभण तों पहला जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो दर घर दी मर्यादा नूं मुख रखदियां फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द जो आप जी ने मुखवाक दे रूप विच सरवण कीता है सूई राग विच पंजवे पातशाह धन गुरु अर्जुन साहब महाराज की रसना तो उचारण कीता होया। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे मुबारक अंक 743 अते 44 दे उत्ते सुभायमान है। महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने माधवे पज दिन नित रहणी। गुरदेव ने फरमाया कि वह जिहड़ा माया दा पति अकाल पुरख है ना उहनूं पज पज दा अर्थ है चेते करना। जिवें सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने भजो गोबिंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यह हीला इस करके उनू चेते करना है उनू याद करना है। रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टा।

सच नाय रहाउ। साचे नाम की तिल वड्याई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना उह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ

भगवती जी की पात शही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कारनौ निदे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दिदार का ध्यान धर के। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहबजादिया चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हित शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा स्वासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के। बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी साए खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसादान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार। बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब होर गुरुद्वारिया गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरण आई, कर दया नाम प्रकाश।

प्राण सुखाई, हर कीर्त हमरी रह रास रहाउ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तासें, मिल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जमपास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास।